विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य और कला, संस्कृति, पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: में सदस्य 2083 आश्विन 5 गति को अंतिम उपस्थिति केन्द्र रहेको संस्थाको मुख्य कार्यालय मैना पोखरी में उपस्थित हुन सकिनेछ। थप जानकारी का लागि संस्थाको तपसिल बमोजिम सम्पर्क नम्बर में कार्यालय समय भित्र सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ। मुख्य कार्यालय मैना पोखरी 0494-411-030 नामदु सेवा केन्द्र नामदु 9851-322-136 गैरीमुदी सेवा केन्द्र गैरीमुदी 9851-322-138 जुगु सेवा केन्द्र जुगु 9851-322-141 चरीकोट सेवा केन्द्र चरीकोट 9851-322-134 काठमाडौँ सेवा केन्द्र काठमाडौँ 9851-322-147
1: देशबहादुर मिजार व्यवस्थापक जनमुखी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बैतेश्वर गाउँपालिका 5 मैना पोखरी दोलखा।

0: नेपाल को नया आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज
1: परतों के एक खासियत है कि देन वाला अक्सर कोई अपना खास ही होता है।

विश्लेषण, मनोरंजन, साहित्य र कला, संस्कृति, पर्यटन र विकास कला की जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: मेसिनरी आधुनिक मेसिन हाथी ट्रैक्टर कंबाइन मिल जेनेरेटर थ्रेसर मोटर ग्राइंडर चेनसो सुफत मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ। साथै बिग्रेको स्थान में पुगे मरमत गरिने व्यवस्था समेत रहेको छ। थप जानकारी का लागि संपर्क नंबर 9840113567 9763 58033।
1: प्रोपाइटर नवीन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मेसिनरी स्टोर एण्ड सप्लायर्स, बिगु गाउँपालिका 4 सिंगटी दोलोखा।
2: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।